जय। पार्वती हनुमान की जय। नौ दुर्गा माता की जय। महाशक्ति महाकाली माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम और शक्ति से बोलो सत्य सनातन धर्म की। सकल पंच जय जय सीताराम।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: अच्छा रुको एक मिनट।
1: यस सर। ये किस लिए सर?
0: अरे आज रामनवमी है।
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: और सुनो ये सबको बांट देना।

कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और महान संदेश दे दिया।

प्रेम से बोलो से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मै डेरी बोती शुभ स्वागतम टू ईच एंड एवरीवन हैज यू जॉइनिंग अस फॉर आवर ब्यूटीफुल प्रोग्राम इन पूजा विधि राइट हियर ऑन रेडियो जागृति। सो स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड काइंड कॉम्प्लीमेंट्स टू आवर स्पॉन्सर्स फॉर दिस मॉर्निंग पूजा विधि। आई एम योर होस्ट पंडित राकेश महाराज। मै डेरी बोती स्तुति एंड पूजा विधि। बिफोर वी स्टार्ट आवर वंडरफुल प्रोग्राम, लेट अस ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन माय अपॉन श्री गजानन स्वामी। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। Salutation to Bhagwan Ganesh, the remover of all obstacles, the giver of all success in all endeavors. Today we ask Ganesh Baba to shower choicest blessing in this wonderful Thursday morning of devotion. Hey Bhagwan Shri Ganesh Ji, we ask you to come and accept our pujan. Om Gham Ganapate Namaha.

समय की बात है कि कन्हैया ने गोकुला को छोड़कर के और वृंदावन को चला गया। राधे अति दुखी होकर के वो रोती है। कृष्ण लीव्स एंड गोज टू गोकुला। राधा इज वेरी अनहैप्पी एंड शी सेज